कराई खनी उकर राई रत तो हक खेत तन्या की रता हचस खेपर में आते की अरे हिनवंत गई तुते कोई पीना पाई कुछ पपूनी तता बेरनार्डो मामा फ्रांसिस्का हिने जाता मामा पाती मामा तेरेसा Emilio!